0: ना पेपर लालन जवास वीरा पत्ता बेगिर सुकार अंदरों रिस्क के मेरा क्लियर
1: Pues mi malo, Sira.